0: आज मैं हारगढ़ हागढ़ 30 मिनट में दिव्य राज्य गढ़ में ग्रेस ने बाज रहे ने में के प्रोग्राम गाल में वाह दखा लो में गंदा मामला की और मैं कुरिम से महाते कुरिम हाते के खबर कुरिम साल में वाह दखा ने मालूम है तो एक रस्म में तक मुनासिबत होगा है दौड़ में विष्णु भी कंत तही को बाहे में और मैं मामला की और मैं मेहार गोली फ मेरे रामदा अस्सलाम वालेकुम रामदा
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: مر باج ہند کے دے
1: رضویہ دے پرنا عید مبارک علی کریا میں بدل دی دے گیس این نن تو کیا
2: ہاں علی کریا ہے بدل دی ہاں میں عید کا دے تو
0: تیرے گا علی
1: کریا میں بدل دی
2: ہاں رنگل واہ کی
0: کبا رمدار ہے جعفت اچھی دی ورگا دے دے تو
1: ورگا دے اگے رات کرے
2: کوچ ہوری جعفت کا
1: تیار ತಂಕೊಳೆ ದುರ್ಗಾಯ್ ಹುಣ್ಣಿ ಜಮಾನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹ ಲೋಬಿ
2: ಕೊಡಾನಿಡ್
1: ರೈಸ್ ಪಾಸ್ತಾ
2: ನೂಡಲ್ಸ್
1: ನಮಗೆ ಕಮದಾನಿ ಜಮಾನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕುಕುಳದ ಹಣ ಕುಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳದೇ ಸಿಹಿಗೆ
2: ಕಾಳುಗಡೆ ಹಾದ ಮೀರೆ ಹಣ ಕೊಗ್ಗೆ ಅಳುಗಡೆ ಹಾದ ಮೀರೆ ಹಣ ಕೊಗ್ಗೆ ಕುರಿಗೆ ದೆನ್ ಕೋಚಿ ಸತ್ತೋ ಹುರಿ
1: ಕುರಿಗೆ ಹುಣ್ಣಾನಿ ದೆನ್ ಹಮ ಬಿಬುಣಾ ಹಿ ಹಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲಾಪತಿ ಕೇನ್ ತಯಾರ ಕೊಲ್ಲಾಫ ದೆನ್ ಹುಣ್ಣಾನಿ ದೊಂದ್ ಕೇವ ಜಹಾಫ ಪಳಲು ಅಸಾರ ಜಹಾಫ ಕುಕುಳು ಲಿಯ ಜಹಾಗಿನ್ ಬಂದಿಗಿನ್ ಅವಾದ ಕಕ್ಕಾಫ ಕುಕುಳು ನಾನು ಮೆದುವೆ ನಿರೋಷಿ ಗಂಡ ಸೊಳಿ ಗಂಡ
2: ಹುಣ್ಣಾನಿ
1: ರಿಹಾ ಕುರು ಹುಣ್ಣಾನಿ ಚಟನ್ ಹುಣ್ಣಾನಿ ದೆನ್ ಫಣಿ ಗಿರಾಫ ಹುಣ್ಣಾನಿ ಇಸ್ಬಗಲುನ್ನ ದೊಂದ್ ಕೇವ ಕೊರಾಗಿನ್ನ ಏರು ಗದಿ ಕೇಮಗಿಂದ ಚಟನಿ ಸದಾನೆ ಮೀ ಆದಾಗಿ ಬಗೀಚ ಫತುನ್ನ ಜಮರೂಲು ಫತುನ್ನ ಏರು ಗದಿ ಅವಗಣ ಮ್ಯಾಂಪ ಸಾಂಗಿ ಇರು ಗದಿ ನಿಹಾರ್ ದೇಖಾ ಸಟಾನಿ ವಿಸಮ ತರಕಾರಿ ನೋಣಿಯ ಕಾಯಿ ಬಗೀಚಾ ಮಗೇಗೆ ಸರಹದ್ದು ವೈಕುರಂ ಬಗೀಚಾ ಜಹಾಪ ಏ ಬಗೀಚಾ ಹಮ ಪತು ತಂಕೊಳ್ಳ ಕುಂಕುಣ ಸಟ್ಕಂಡ ಆಗಿ ಏಕೋ ಶಾದಂಗೆ ಸಟಾನಿ ಹದಾನೆ ದೇಹಮ ಜಮರೋಲು ಫತುಂ
0: ಎಳಫತುಂ
1: ಫತುಂ ಸದಾನಿ ದೆ ಬುಡಸಿಯಾ ಕೋ ಕೊರಾಲಾಗಿಂದೆ ಕಾಲಚ್ಚಿ ಪತಕಪ್ಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೋ ಏರು ಗಾಯ ಕಾಲ ಸರ್ ಮಿಹಾರ ದೆ ಕುದಿನ್ನ ಕಮಕ್ಕನು ದಾನೆ ದೆ ಮಿಹಾರು
2: ಅಳೆ ಬಲಾನ ಮಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಗಾಡುಗೆ ಸುನ್ನ ಬಡ ಜಂಬರೋಲ್ ಕಹೆ ಹೆಮ ತಿಫೈ ರಹಬಲ ಮಿಜೆ ಹುನಿ ಥಿಂಗ ಸೆಬುರಿ ದೆತ್ತ
1: ವರ ಮಿ ಜಂಬರೋಲ್ ಪತಕ ಹುನ್ನಾನೆ ರಿದ್ಮಿ ಮಡ ಮಡ ಹುಯಿರ ರಹ ಪಶೇಂಗೆ ತ ಏ ಸರ್ ವರ ಮಿ ರವಾನ ಸಟನಿ ಹದಾನೆ
0: ಅಂಗೋಳ ಲಫತ್ತ ಏ
1: ಆ ತಂಕೋಳ ಲ ಸರ್ ಎಮ್ ಮಿ ಹರ್ಫ ದೂ ಕೊಫ ಏರ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇನ್ ಪಹುಗೆ ಗೊತ್ತೇನ್ ತಯಾರು ಕುರಿ ಪಹುಗೆ ಕೆಂತ ಕುರಿ ಗೊತ್ತ ತಯಾರು ಕುರಿ ಕೇಮಗ ಹುರಿ
2: ಕುರಿ
1: ಮಸ್ಕುಳು ಹಣ ಕೊಗ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಸ್ಬಗಲ್ ಫಣ್ಣ ನೋಣಿಯ ದ್ವಾಸಿ ಗಿನ ಮಿ ಹುಂತ ಸಮ ಬೊಡತಿ ಹೆದು ಅಮ ಅಬಾಯ ಗಣಗಿನ ಕೆ ಹಮ ಬೊಡತಿ ಬುರುಗ ಅವರ ದೂದು ಹುಕಂ ಅದ್ದಿ ಹುಕಂ ಹಮ ವರ ಬೊಡ ಯಾ ಮುನಾಸಬದ ಹಮ ಇದ ನಮಾದ ಹಮ ವರ ಗುಳೆ ದೆ ಸಿ ಹೆಂ ಬೇ ಫುಳುಂದಾನಿ ஆமா ஜுப்பா குர்தா சகுடி தாக்கிஹா புது முண்டு புது கமீஸ் எதையும் வரக்கூடிய மீன் அண்ணுனி அவதானி புது பட்டு தோணும் புது கமீஸ் மீகு தம்மி நம்ம சென்னி மீ போட்டு மேதானம் கைதுனா அது குறாரு வைக்கம் பயப்பேஃபுனு திவே கஷி கிண்ணுவா குத்தகமா அதாகி இன்னும் நேலோனு சேவானுகா பாத்தம் கொலை பாகன் ஹீவா பட்டு தோணும் லேகன் கமீஸ் தான் வரம் மதுபாய் மீ முனாசபத்தை தக்க அழுகண்ட மேம் வர அழுகண்டகமா தர்வத்தை திவி ஜீயாகம் அழுகண்ட வைக்கமா காய் கஷி கிம்பா குத்த நேர வள வர ஸ்கூலுகா கவுன்சிலும் தேவி குருவாம வாரா தெக்கே நான் கிச்சு அழுகண்டா கியா ஃபைன் ஆமா இத்தனை கொஸ்து மீன் வச்சு அழகா கம்தாக இதே கொஸ்து மீன் வச்சு அழகா கம்தாக இதே கொஸ்து மீன் வச்சு அழகா கம்தாக இதே கொஸ்து மீன் வச்சு அழகா கம்தாக இதே கொஸ்து மீன் வச்சு அழகா கம்தாக இதே கொஸ்து மீன் வச்சு அழகா கம்தாக இதே கொஸ்து மீன் வச்சு அழகா கம்தாக இதே கொஸ்து மீன் வச்சு அழகா கம்தாக இதே கொஸ்து மீன் வச்சு அழகா கம்தாக இதே கொஸ்து மீன் வச்சு அழகா கம்தாக இதே கொஸ்து மீன் வச்சு அழகா கம்தாக இதே கொஸ்து மீன் வச்சு அழகா கம்தாக இதே கொஸ்து மீன் வச்சு அழகா கம்தா ಕುಂತಾಗ ಉಜೆ ಹೋಗ್ತ ಫಿರಿ ಹೆಂಬೆ ಫುಳು ಏ ಬದೇ ದಿಂಗ ಹಮ ಬಾರ ಕಹಲ ಬಾರ ಮದು ಹೆಂಬೆ ಫುಳು ಗಿಣಾಂಗ ಎ ಗೊತ್ತ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಗೊಸುಳೆ ಎಂಬಿಮ ಹೆದು ಹಮ ಮಿರಾರ್ ಬುಣಾಣಿ ಗಿನ ಬೇ ಫುಳು ಅಮ ಗಿನ ಮಾಸ್ ಬತ್ತಕ ಹಮ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತ ಶೆ ಹೆದು ಮಾಣಿ ಎ ಕಮಕೋ ಎಗೆ ತೆರೆಗ ಬಾಯ ಕೋಯ ಬತ್ತಿ ಬೇಯೆ ಎ ಕಶಿ ಗಿನ ವಾ ಹೆದು ಮುಗಾರ ಸೇದಂ ಬಾರ ಮದುನ್ನೆ ಅಲುಗಳ ಮಿಸೆ ನಮಂತಾರ ತಗೋ ನೆ ಗುರಿ ಹಾಗ ತಕ ಸ್ಮಿ ಉಳೇನೆ ದೋ ಮೂನಗೆ ಕುಲ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರ ಮೇಕಪ್ ಕೊಗ್ಗಿ ತುಂಬ ಪತ್ ಕುಲ ಬಡು ಹಿಸಾಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮೀ ಉಸೂಲೆ ಬಾಯ್ ಪಾಟಿ ತಗೋ ಇಸ್ತಿಹಾರ ಟೀ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಣಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಳಿ ಮಣ ಕಮ್ಮಿ ಮಿಸ್ಕಿ ತಗೋತಕ ಎರಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬರ ಗಿನ ಇಸ್ತಿಹಾರ ತಗೊಂಡು ಕಿತ್ಕೊಪ್ಪ ಹುಣ್ಣ ಎಚ್ಚಿದಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಮಿಹಾರು ಕಂತ ಹುಣ್ಣಗೊತ್ತೆ ಮಿಹಾರು ಮಿರಾರು ಬಿಡ ತಿಮ್ಮ ಹಾಸಬಾತ ಕದ್ದಾಮಿ ಅಮ್ಮ ಎದು ವರಗ್ಗಿನ ಬೇಪು ಎಷ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಷ್ಟೇ ಅಳುಗಣ್ಣ ತಂಗ ಮಾಡ
0: ಜಮಾನ್ ತರಗ್ಗಿ ತರಗ್ಗಿ ತಕ ಅಕ್ಕಿ ತಕೊರಿಯದಾಮ ಜಮಾನ್ ತರಗ್ಗಿಂದಾರ ಅಳ್ಮೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮಕ ವಿಸ್ನಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾಯ ಕೊಮ್ಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಫಳಕ್ಕೆ ಅಳ್ಮದನ್ನ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫಣಕ್ಕೆ ವರ ರೀತಿ ಹೆದು ಲಿವಿಡಾನ ಬೇಫಣ ಹೆಣ್ಣಮ್ಮೆ ಸೆ ಬೇಫಳಗ್ಗೆ ಚೆಂಬರು
1: ಕಷ್ಟಿಗೆ ರೀತಿ ಹೆದು ಮೇರಾಮಿ ಇದು ಮಿಕ್ಯಾನಿ ಎಮಿ ಹಾಗೆ ಅವರ ನಿವಾವಂಜೆ ಹೇನೆ
0: ಸಾಫ್ತಾ ಹಿರ್ವಾಂಜೆ
1: ಬಲಾಗನ ಗೊತ್ತ ಎಮಿ ಹಾ ಸಾಫ್ತಾ ಹಿರ್ವಾಂಜೆ ಹೇನೆ ಎಮಿ ಹಾ ಯಾಗ ಹೆಮ್ಮಿ ಹುಂ ಬಲಾಗನ ಗೊತ್ತ ಅಳಾಗನ ಗೊತ್ತ ಬೇ ಎಮಿ ಹಾಗೆ ಸಾಫ್ತಾ ಹಿರ್ ಕಂಪರಿ ಹಮ ವೆಸಾ ಎಮಿ ಹಾಗೆ ಫೇರಾಮುಗ ಯಹಾ ಆಬು ಕಮೆ ನುಹುಣ್ಣ ನಿವಿ ಯಾ ಯೋ ತಿರೀತಿ ಹೆದು ಮೇ ಹೇಳಿಸ ಅಳಗಣ ದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತ
0: ಖಾಸ ರಸ್ಮಿಯ ತಕ ದಾರ ಅಳ್ಮೆ ಜೆಹೇನ ಕಹಗಂತ ತಕ ಸಮಾಲ್ ಕಂದ ಹೆಂಗೇತ ಏ ಅಳ್ಮೆ ಎಕಶಿ ಗೆಂಬಾ ಎ ತನಕ ಎಕಶಿ ಗೆಂಬಾ ಎಚ್ಚದ ಕೊಮ್ಮೆಚ್ಚಗ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ವಟ್ಟಾದಾಗ ಕರುಕೆಂಡ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಸುಣ್ಣ ಹೆಂಗೇತ ಕುರುವೆಸ್ ಅದ ಗಿರ್ವಾಂದಿ ಗಿರ್ವಾಂದಿ ಮುಖ
2: ಅದೇ
0: ಕಹ ಗೊತ್ತೆ ಆಮ ಗೊತ್ತೆ ಕೆಶುವಲ್ಲಿ ಅಳ್ಮೆ ಮೇಕೆ ಅದೇ ಕದ ಮೆಹಿ ಒಳೆಯ ವಟ್ಟಾದ ಎಚ್ಚಸ ತಂತನ ದೀಮ ಅವರ ತಫಾತ್ ಸ್ವಾಂಜಿ ಹೇನ ಅಳ್ಮೆ ನಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರ್ ದೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿ ನೊಲಿಬೇವರು ಬೇನು ಅಳ್ಣ ಗಿರಬೇ
2: ಜಾಣ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ اور باجر ہے نو کہہ دیں گے تو عید مبارک ہے کس
0: جانا আরে কোন তাকতি হরে
1: মিহার আসু মেই মুদং এরং উলাফা
0: কোন রহেগা
1: আসু
2: মুদং এরং এমেরাঙ্গালি কোঙ্কা হেদুমে তো জানা
1: মুদং এরং দাই ইননা হামা হাসে হেদুমে তো
0: হাসে হেদুমে তো
1: এ টি-শার্ট পাহা লাইছে
0: কাহাল টি-শার্ট কাছে দো
1: কাঙ্গলে দিগু
0: হ্যাঁ জানা একো কো মে আহারোস মে দিয়েই দো
1: মে আহারোস দে
2: কোঙ্কা মে নুয়েগে কোঙ্কা মে নুয়েগে রামি জারে কা
0: দিয়ে আহারোস সরে প্ল্যান করে কবে মে আহারোস দিয়েই দেন কি কোরা
2: কোবা এখন
1: ফিরে সরে রাখল নু দেবি
0: এখন রাখা কা দাম বেগে প্ল্যান করব্বা করব্বা করব্বা ইং আহারতেস দেবে গতে নই দেই রা করে
1: এবার আহারো মিরে সাদিস
2: আদি আদি মাড কল্লা আদি আহারো কে বাকি এবতে বার দোস
0: নো বড় ইদরে
2: বড় ইদ ইদ
1: ইদ বালান দাম বেগে
0: ইদ বালান দাম বেগে দে তো জানা দেম ইয়ান্নার
1: কদরে
0: বতে নো
1: মালিবান্নায় এচি জহালাগেন দাঞ্চেনে দে গম হেডুং অলমগস বি হামে সম মি আংহে বেরিং হম বরং হাসা কইব জে বলা মি কায়া ফাল নোয়া কহলা হেডুং লাঞ্চেনে তিগু কোং হেডুং লাঞ্চেনে এ হেডু মাকি এ ফেরা মাকি এ তানাক গুলে হেডু মেকম ওয়াঞ্চেনে
0: হুম এতনা গুলে
1: তো মা হল দাল সমাশেক তা গুলে কহলা হেডু লাঞ্চেনে কম কই সাফতা হেডু মেকম গওয়াঞ্চেনে মি রাস্তার সাফ করেন দাল সম এ এ হুরিয়া কাম কাঙ্গা বজে বালা হামা পাটে তাকা দায়ের এমনে হাম এ কাম গুলে জাল এ কুলে গেছে লাম গন ফেনিয়াম হাম এ কুলে লেবে তো বালাং জি হেন হামা
0: আ রাদে বাই কাভন হফলা তাহ কেস নিকং এন কাহ দে বাকে খাস কুলে সোয়ে দে তো
1: লাব্বা
0: এ কাহ দে দাওতে গতল দি বজে বান এখন তে বে তো বালন দে তো
1: খাড় গছ লে দা নিমসালা কাকে কুলে লাম বন ফমসাল কা ইহা গান নো মি হ কস এ ওয়ানে এক কামান হাম এক শিগেম ওয়া কা হাম এ গুলে হেদু মে লেবে তো মি আত কো হুরি জাম গানে গে নো নো সিঙ্গা আত কো হুরি ই এ কুলে হাম লাগে দা দে স্কুল তো কস বনে হাম টিচার গ দোস বেলেন ভেরিং দিস মি কা দোস তো সাহ কুরার সে বনে বাকি কুলে লাম হাম এ কুলে হাম হুরি ই হাম লাগে এ কামা গুলে কাহলে হেদু মে তো বলন জি নে লাইরুগা
0: দেওয়ালমেন
1: এটা বড় সামাল কামা দেন যেন আমরা সাফ তাহির কম কোন হেতু মে লিস যেন আমরা সাফ তাহির কম না মি হা গেন বার মির বস্তু যেন মিদেন বার পেভার মি হন তাকে মুলে তানাক এ জানে মি ফাহ কল আহম কে
0: বড় বড় শুকরিয়া জানা
1: বড় বড় শুকরিয়া গুলা দিনি
0: আদে
1: পর ইদম বার বার ইদম
0: বার আদে বদলওয়ান কম উম্মেদ আকি বাকি দান
2: আদে লগম মিদাকরি ek raspyat tak amnas patog hedungulum go visnam bi kanta teki ko ba to miwah ka desama argumen miwah ka dakala na den ege kurin haggali salis fahin hingali mihar me nge ta enti be from ge request lava ga vagutu samawa umidani kurta mamundani ehmema psm ya medir ka va lava request kolava fasar ka minute tere hama lava badal kolave dani nge ta

0: आदे बे पप्पा कह रही है आदे बे
1: एकों पप्पा रेस्ट करा करना थी होते
0: पप्पा रेस्ट करा से में होते एकों आदे बे पप्पा कह रही है
1: पप्पा मम्मा को बाता
0: मम्मा भी बेर को अन्नन भरा आवे हदर फुल
1: पप्पा इंगा तुम मम्मा कुरी कमे
0: की कुरी मम्मा की कुरी
1: खैरा या दे लंच बॉक्स फनवे
0: दे लंच है दे लंच बॉक्स एक ही ने
1: खैरा स्कूल दिया ही बैग एल लंच बॉक्स लागे
0: दें
1: अकुम स्कूल को तो मम्मा अनेक का लंच बॉक्स फनवा फिर बाला पप्पा मैं नोट करो इस तक को फेल थे
0: एं तो बा
1: मैं तेरे मम्मा के खैरा या मम्मा फरातो
0: मम्मा के खैरा या
1: हमें हिंदी फोटे मम्मे मैं हाल नोट लिया न दस बजे एम मैं तेरे लंच बॉक्स को ले आया
0: मम्मा
1: बाप्पी अंगे था खैरा मेरी बा रंग फावे
0: एक ही बे
1: ए मम्मा है नोट गले फोटे मा एक हम मम्मा खैरा बैगा बस लंच बॉक्स ला फानी का लंच बॉक्स फोड़े मम्मा ने ग्रिड दब
0: मम्मा ही कुरी करने दर फोड़ लंच बॉक्स नूले बे दो हे मैं दर फोड़ उफा कोल लंबे गन तिल नोट ले उनी का मावान
1: खैरा आदि क्लास को दिन ना बस देख के मैं मम्मा की नोट हो
0: असलो
1: मैं मम्मा फोन वेच भी मा
0: ओके हम वेदिया दिम हदानों ते बाप्पे इस नोट फोन वान गे कम में दो को नोट फोन वान यारों दर फोड़ उफा वान माँ बोटा
1: बाप्पा नोट नो फोन वे इस खैरा उफा वाने बला बाप्पा मैं स्कूल का जो ने बाप्पा आ बह को चुन दिया
0: एहें ता
1: मैं खैरा ले उन्हों ते
0: कोबा
1: मैं ते यानो इस फोन खैरा वारा मरो बाप्पा क्या बला
0: मैं आर क्या अम्बी ता
1: हाँ
0: मैं आर क्या अम्बी
1: मैं आर क्या एक हम बाप्पा कन हो रखें क्या बा
0: दर फोड़ नोना ना
1: बाप्पा क्या ने माफा खैरा मरिया आधा खैरा रोमा पला
0: ओके
1: एम वे में खैरा दानी
0: मारो कुप्पा दादी
1: बाप्पा क्या खैरा लिया पुरे चुस खैरा दानी
0: मी हाँ द आधे दें मैं जो ने एक कमेंट को मैं किया कर कोच बलीफ हमें होते खैरा के बाप्पा
1: खैरा मिहारो देहा हारो वे खैरा खैरी अबदो सुननी हमारे कन बाप्पा बाप्पा के खैरा वारल लोगे बाप्पा से खैरा के वर्ल्ड बाप्पा खुद्दे खंतत खैरा नुस किए न ऐहा गिन खंतत खुद्दे न कोमदो को हिंदो न खैरा है लव्वा रीत खुद्दी मीर कुन सहदनी वस बाप्पा स्कूल दायर बाप्पा अबदो सुननी खैरा के आतु कही फैग खैरा बाले उन बाप्पा नुस निदान बैक को दिन बुनी खैरा गहना ने बाप्पा इकन्ने एम्बोने मस खैरा तेरा नुए एक खैरा के बाप्पा की वे मम्मा की वे बाप्पा अधि खैरा के बेस्ट फ्रेंड की वे बाप्पा खैरा दर में बाप्पा वारा दरवान अधि खैरा का के वारा लोभिं पद्दा लान बाप्पा बाप्पा की खैरा के हीरो बाप्पा खैरा तक लोभे अधि खैरा वारा गुंफावे
0: खैरा उस बाप्पा के वारा लोभे वाने Therefore, the Bapper of Bali. Therefore, the Esas to whom Bapper came for the Furich. Bapper loaded me a hurry caronaki. Therefore, the Lay for the Lopi to Bastakum. I have fired Kamuki Caron. Daripada, bapak kita dalam ke, huru hara ummi dah kiri daripada, adik bapak korak kau memasak katanya maksa tak kita makan, kami makan daripada, daripada ke, bapak kita dalam ke nur, bapak kita daripada ke hero komponen, bapak kita lagi ke hero yang ke, tiada kuda-kuda. Bapak kita refol. Bapak dah refol dek. Buaran doa bi. Love you refol.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दिल हराज जगाड के प्रोग्राम तडो सोम के दुआ में आ तेरे न वर मुफावरी वर बाजर दुआ के देमो मेस्त्री मिसलस्ता के मी हफ्ता प्रोग्राम एक्टिव फना मी बदल करनी अलगो रुकिया आ दालगो मेंगे में आ तेरे न वर मुफावरी गुत कुल के देन अलगो मेंगे कौम इखलास तेरे कमा के एक रंग रंग खिदमत करो बे हमें हा मेस्त्री न हित के हे दुआ त रद करेंगे तो इजे के खिदमत तेरे मेद के इसरब बहिन न उफावरी गुत कुल होदा दिन अलगो में देनी इसरब बहिन के अगु वजन करूं इसरब बहिन मी कौम टका को देबे minne bura masakke toga akwazan kurun algomenge mi program ge teren khasa gotte ga mi masakke kurani ade mi mestire mislista ga kom program es algom mi khasa kurani kom es istra besaka no ta algomenge rajje ga rijje ge khidme kurve khidme teren ge teren tafaat mestire ka ade mi hafta ge mestire abe ge tun algomen hamat ekibe fulun ge shur taka algomenge hun teren ge shur taka ade ekibe fulun hamat sual kurama fursat tewen